0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय।
1: ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.

भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री चंदन देवी जी माता जी की जय। श्री साध्वी पूजनंद भरती जी महाराज की जय।

आप विवाह कर लीजिए। तो दोनों ने क्या किया कि गंधर्व विवाह कर लिया और सुख शैल में रहे, और जो तुलसी और शंखचूड नाम का दानव का विवाह हो गया। और धूमधाम साथ विवाह होने के बाद में वो लोग आपस में बैठते रहे, और तुलसी योगिनी धर्मपारायण थी, इस कारण से उसका जो दानव का बल भी बहुत बढ़ गया। एक तो पति पत्नी व्रता का धर्म, दूसरा क्या है कि उसके साथ में कृष्ण का कवच था, दोनों करके बहुत बलशाली दानव हो गया। तो उसने धीरे धीरे धीरे तीनों लोक में शासन करने लगा, देवता दानव सब लोग क्या है कि त्राहिमाम होने लगे। तो उसका कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक दानव था। लेकिन देवता लोक को स्वर्ग से उसने खेदा, और देवता लोग दुखी थे, बाकी सब लोग सुखी थे। इसीलिए क्या है कि पति पत्नी बीच को अगर संबंध अच्छा हो जाता है तो दुनिया में कोई भी नहीं हिला सकते हैं। इसीलिए क्या है कि पहले पति पत्नी को सुंदरता किसमें रहता है, तो उनको एक आपस के संबंध में, जब संबंध बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि पति अभी के जमाने में तो कैसा है कि पहले शादी के समय लेकर आओ, तो शादी के पहले साल क्या होता है कि पति थोड़ा बोलता रहता है, पत्नी सुनती रहती है, और शादी के दूसरा साल क्या होता है, पत्नी का पावर बढ़ जाता है और पत्नी बोलती रहती है और पति सुनता रहता है। फिर तीसरा साल क्या होता है, पति पत्नी लड़ाई करते हैं और पड़ोसी सुनते रहता है। इसीलिए क्या है कि अभी के समाज में तो पति पत्नी बीच बहुत समस्या है कि एक दूसरे में शंका भेदभाव बहुत है, लेकिन हमारे शास्त्र बतलाता है अगर पत्नी और पति पति परायण और पति व्रता पत्नी व्रता होकर रहे तो उसमें से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है। पत्नी व्रता का शक्ति, पति व्रता धर्म का शक्ति बहुत तेजस्वी होता है। शंखचूड़ को ऐसे ही मिला, इसीलिए ये समाज में ये दुनिया में ये पुराण ऐसा शिक्षा देता है कि आप जहां भी है जैसा भी है तो आप क्या कर लीजिए, आराम से आपने एक दूसरे को गुण को दोष को स्वीकार करके ही आपने दाम्पत्य जीवन चलाना चाहिए। सो देर वॉज अ पर्सन, सो ही वेंट टू मेडिटेट, ही आस्क्ड टू गॉड, ओ गॉड प्लीज गिव मी परफेक्ट वाइफ, सो परफेक्ट ब्यूटिफुल परफेक्ट एंड रिच इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड एंड स्पिरिचुअल perfect girl. And the God said, well, I'm happy with your meditation, but I cannot give this boon for you. And he said, why not? What's wrong with this? And he said, because this sort of girl doesn't exist in the world. Yeah. Come to the yoga and daily life, yeah? Otherwise. So, and Brahma said, so that means whatever you have, the successful marriage is not that perfect husband and perfect wife, but that is you accept whatever you have got, negativity or positivity, you accepting. So it is saying that in successful marriage, you need to fall in love every day, but with the same person, not with different person. And also always continuous forgive. So it's a good union. Unification between two persons, forgiveness, the unification between two persons, the forgivers, two forgivers company is the marriage, successful marriage. And Tulasi and Shankarchud was also there. So they were very happy couple. And he was Krishna's bhakta as well. That's why he did not that much harm, but he's very powerful and he always tortures God. And he attacked the Indra in Swarga, in heaven. And they always ran away when the demon's powers came, the God always in problems. And Shankarchud, Tulasi, very happy. Their power was very popular in Triloka, Satyalok, that's Martalyok, two here in the earth, in every way. So that's why they were very happy couple and wonderful couple. They always, they were the example couple also. So it is saying that this Puran want to say that the strength of the love is powerful. So strength of love is very powerful. If husband and wife have got a strong bond, then they can do anything. So, but if there is have got the problem, then other people come and they take advantage, obviously. So that's why it is saying for the beautiful couple life, you never leak your secrecy to other people. So other people will put vested interest and take benefit. So if you see the Shiva Parvati also,
they have got a good bond. So always, so they help each other. So in husband and wife also, when we see that our life is not for to that pleasure, not only for intimacy, not only for the children or family. Both of you came for marriage, for the helping each other for spiritual growth, happiness. If you understand in that way, definitely she's helping to him and he's helping to her. And this will be very happy marriage life, couple life. In the same way here also Sankachut and that Tulasi is very happy, but they always torturing the God. The Sankachut is very brave. No one can destroy. No one can do because he has that number one Sudarshan Chakra, that the Krishna Kavach. Second is Krishna Mantra. And third is the Patni's, the wife's power. So Weber have got a great love with wife and husband. They have got strength and power, obviously. In nowadays, you can see there is the little bit fraction in society and people are very weak. When they are weak inside, no matter you have a fame, name, property, asset, everything, but if there is a tension in your home, then the people becomes always weak. So if you are successful in a business, maybe in office, very high degree, but if in the when you dominate in your home, that what will happen? There's always fight, then it will be the problem. So that's why it is saying in science also, always maintain the love. The one day that husband, there was a husband and wife told to the husband, always he used to be scared with wife. And he asked one day, they went to see the zoo, animal zoo. And husband saw the tiger, two tigers was playing nicely and loving each other. And he asks, I would like to ask one thing, my dear, that husband asked to wife. What would you like to ask? Why the tiger is not scaring with his wife? So, and what's the difference? And she said, well, the human being, they marry, but they don't love. But tiger, animal, they don't marry, but love. So the difference is that. If you have love, then it will go together. The minute we marry, we think that is each other's asset. So that's why it's a power, the problem of power, ego, that comes. And animal, they don't marry, but they still love. So it means like always you have got blessings. And if you have love, that is the powerful. Pati, brata, dharma. पति व्रता धर्म बहुत शक्तिशाली होता है इसलिए क्या है कि आप लोग ने बहुत जगह में पढ़ा कि सीता के पतिव्रता धर्म से रावण को राम ने जीत लिया ऐसे करके आप देख लीजिए कि पार्वती को पतिव्रता धर्म से महादेव ने जीत लिया और लक्ष्मी के पतिव्रता धर्म से कि विष्णु भगवान अजय है कि हरदम वो शक्तिशाली है इसलिए आज के समाज में आज के दुनिया में हमको सीखना ही चाहिए कि पति पति बीच को जो शक्ति होता है तो अदम्य रहता है वो शक्ति कैसा आता है कि एक ने दूसरे को अपमान कभी नहीं करे तो वही क्या है कि घर का शक्ति बन जाता है और अभी तो क्या है कि पति का ध्यान एका तरफ और पति का दूसरा तरफ हो जाता है और जब फोन आ जाता है कि पति की तो टॉयलेट जाता है कि बाहर जाके अकेले फोन करता है और पत्नी में शंका हो जाता है धीरे धीरे क्या हो जाता है तो लड़ाई हो जाता है इसीलिए क्या है कि आपको कोई भी चीज को सकारात्मक भाव से देखे अगर पत्नी ने घर में कुछ खाना बनाया और नमक कमी भी हो गया आप बोल सकते हैं कि अरे आपको हाथ तो बहुत अच्छा है तो नमक नहीं था फिर भी कितना स्वाद का है तो बोलेंगे तो कितना अच्छा होगा फिर आप डांटेंगे अरे आपने क्यों नमक नहीं डाला ये बदमाश है ऐसा है बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा तो ऐसे करके क्या है कि आर्ट ऑफ लाइफ ये पुराण और सारे हमारे शास्त्र क्या सिखाता है जीवन जीने का कला सिखाता है जय बोले भगवान शिव जी की जय एंड तुलसी आल्सो वेरी हैप्पी नॉट ओनली तुलसी दैट इफ यू सी द ऑल स्क्रिप्चर महादेव इज ब्रेव बिकॉज हिज वाइफ हैव गॉट डिवोशन एंड हस्बैंड हैव गॉट डिवोशन बोथ वे सो दे हैव गॉट स्ट्रांगनेस एंड इफ यू सी द लक्ष्मी विष्णु आल्सो They also each other's very brave because of the Lakshmi's power, Lakshmi's devotion towards husband, the Vishnu is that's always brave. And Shiva in the same way. So if you see some other way, Radha Krishna, and everywhere there is the power of the wife and husband, when that two unions unites, that's a wonderful power. And that teaches also our scripture also, nowadays in this modern society, that is the wonderful if you unite each others and that will be the
हैप्पी मैरिज लाइफ।

Obviously, she is serving this universe. Many, she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if you're quarantined, if your custom allow you. So take some tulasi seed with you, if you haven't already done this. And tulasi is the wonderful. It need to go everywhere. And this is for the human welfare. Human welfare. Everyone deserves to take advantage from these divine herbs, tulasi. That's why tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And tulasi is offering to Saligram. And Saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is, what is the Saligram? So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people, they keep at least five Saligrams. So five Saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five Saligrams. So everyone can keep in Saligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That Tulasi is oxygens, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial Tulasi. If you put in tea, there is Tulsi tea as well. If you wear Tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always two pieces of Tulasi, that removes the bacteria and helps you. The Tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, Tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and Tulasi's Mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagavan Ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में पति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया पाँव धो लिया घर में लेकर गया खाना दे दिया रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपनी पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा जय बोलिए भगवान नारायण की जय तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है ना तो भाई नहीं तो कोई जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है लेकिन दोनों दुश्मन है तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है अच्छा नहीं है
तो ये शत्रु के

रहता होता है। इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है, तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई, जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूँ। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहाँ पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसीलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So, without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands years that passed away. So, but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So, ye Puran hai ki Shiv Puran mein jo aata hai ki Tulsi Mata Saligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए, पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं। ये शिव पुराण का कहानी है, शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये उन तुलसी ने जो शरीर देह त्याग किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वहीं मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसी कथा है। जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक एंड विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड वेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. My husband is used to. And then before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, he performs that, and the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu send message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the

project is done, then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. O Vishnu, you are the strong hearted. You don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda curse, you are like the tree, like you didn't moved. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. तो फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि हे विष्णु छलकारी तू जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन. And that's why in prayer, everywhere, we use the kush grass. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isiliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur क्या है कि हम जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people.
So people is Vishnu, and Vishnu will

take the responsibility. And that is the because the course of the Brinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people, tree. And you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, पीपल वुड्स, तुलसी वुड्स, कुश ग्रास, तुलसी वुड। सो व्हेन यू डेथ आल्सो इन सिमेट्री, इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल, कुश, तुलसी, इट्स एज लाइक it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur tulasi ke lakdi saath mein rakhlo aur chita mein koi bhi, kisi ka bhi chita, पीपल का लकड़ी से, तुलसी का लकड़ी से, उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपका विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड। सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री, द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें, सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर, हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटीफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटीफुल। सो इट्स एज नो मैटर व्हाट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड, बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल। That's why our saint and Rishi Munis, they ate that every prayer. You need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal, and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalas also, that we put that if you see that in the kalas, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can see and feel the that's tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से, पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है। और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया। कब प्राप्त किया, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में

0: ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जब बोध गया में आए आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में ही उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी की कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह पीपल शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, then you can go under the banyan tree on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pira. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning. The great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagavan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got We finished many chapters today, so which is important also. We will not have time, some other time, to read in detail. That is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की
0: जय,
2: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय,
2: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर।

0: Bombole, Sri Sri Dipnara, Bhagwane ki jai, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva ki jai, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwane ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwaranandji Gurudeva ki jai.
1: Jai Bole Bhole Baba ki. So, in Shiva Purana, whatever talks, the Sustani Purana also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So, it is saying that in the sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality. To Shiv Bhapuran, hamare liye aur sare Vedadi Ved kya karta hai ki hamare liye jivan kaisa saral banana hai. और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है. और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा, वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है.

वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए, फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है, तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजंट इट, सो हनुमान इज ए भक्त ऑफ राम, वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, बट इन सिमिलरली अर्जुन ऑल्सो द वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड भक्त ऑल्सो द कृष्ण, सो वाई वी कैन नॉट सेलिब्रेट अर्जुन जयंती, बिकॉज हनुमान इज अ डिवोटेड पर्सन, ही नेवर डाउट, ही नेवर डाउट, सो ही ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, देर वॉज नो डाउट फॉर हिम गॉड एग्जिस्ट और नॉट, देर इज ऑलवेज ही बिलीव एंड ट्रस्ट, सो दैट्स वाई ही वी सेलिब्रेट द डिवोशन ऑफ हनुमान, दैट्स वाई वी कॉल्ड हनुमान जयंती। But we do we celebrate Arjun Jayanti? No, because Arjun also devotee, but he always doubt. He's asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate, but how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I mean confused. So, and that's a continuously sarva dharman paritajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verse 66, sarva dharman parityajya mamikam saranam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchah. So Bhagavad Gita ke 18 adhyay ke 66 shlok mein jo likha hai wo bhi kya hai ki sarva dharman matlab ki koi bhi cheez aapka jo danaviya cheez hai, koi bhi asura tatva hai, sabko chhod ke ek nirvitta hokar manaviya dharma brahma dharma mein nirlipta ho jaiye, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज, इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर, इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो, एंड फॉर द फेथ मेनी स्टोरीज इज कम्स, मेनी थिंग्स कम्स, सो दैट्स व्हाई देयर इज थ्योरीज, वन इज यू रिमेन happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a charvak siddhanta, the charvak theory. The charvak theory says like yavat jivet sukham jivet rinam krivet gritam pivet vastri bhutas dehasya punaragaman kutaha, that means yavat jivet sukham jivet, as long as you live happily, enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort give means like nectar, enjoy your life. But that Charvak's theory is that said, but in spirituality it says like there is a great nectar, if you have the addiction of divine you don't need to enjoy for wine, so in you can enjoy with divine, the divinity spirituality is really good. So that's why it says like trust and follow the Shiva Purans, it says like from Rudra Samhita to this we can summarize, when we summarize that the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family, this is the one of the wonderful story. And secondly we can learn this one great devotion, deep devotion without any doubt, where is doubt cut it out and continuously you follow. And later on finally it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the trigona, proton, neutron and electron, they merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful, and I think today we need to conclude this one. So aaj ke liye aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein
पहले से अभी तक क्या

हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था, ऐसे करके जालंधर, जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया। पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया, इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है। आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था। तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा। जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के। अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

0: भगवान की
1: जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी महाजानी जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की। गुड इवनिंग, वेलकम, नाइस टू सी यू दिस इवनिंग अगेन। टुडे इज अनदर ब्यूटिफुल डे, सन शाइनिंग, अनफॉर्चुनेटली नो रेन। वी नीड लॉट ऑफ वाटर बट दैट्स गुड ऑल्सो, वन डे सन शाइन, वन और टू डेज। दिस इवनिंग सब्जेक्ट इज त्राटक, फ्रॉम फर्स्ट हठयोगा क्रिया, इन वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस साधना कैंप आई स्पोक अबाउट त्राटक। नाउ लेट्स से हाउ इन प्रैक्टिकल वे त्राटक शुड बी प्रैक्टिस्ड। We could have done practically here today, but due to strong wind, we cannot have a candle flame. Therefore, just a theory of the technique as I spoke before, Tratak means gazing on one point. Best is on the flame from good ghee lamp.

0: बोले श्री देव नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सत गुरुदेव की जय,
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय, श्री अलकपुरी

बड़े श्रीदीप नारायण भगवान की जय, देव पुरुष महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय।

बोल श्री रिपमारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय।

0: Come a little back. Thoda. Mere bappi se ho. Yeah, mere paas me. Ab dono ek saath saath reho, beta. Aur mask nikal do. Side karo. Slow. Thank you.
1: Shri Deep Nan Bhagwan ki jai. Devi Shramadev ki jai.
0: थोड़ा दूर है.
2: हिंदम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om Guru.

0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देव पुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड Those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are like this. तो इनको दोनों बहनों को एक तरफ लगाओ next time. क्यों माता है भाई ऐसा है कि आप या तो यहाँ से आके बैठा दो या वहाँ तो आप दो बैठे हो तो पीछे वो लोग भला यूँ देखें फंसा यूँ करें हैं जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे मैं तो हमें ठीक है हमें थोड़े थाने करते उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है कितना है क्या है कैसा हुआ है तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे संग किसके साथ में रहना है जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी दैट इज कॉल्ड सत्संग Sat, Sat is the good things, very things, everything. Sat Sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, say, do aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं उसका कहता हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे तो फिर वो इधर करे फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Woh Sat kahan hai? Woh Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai. Janwaron ka bhi hai. Woh bhi aata hai. तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So, child is going front and mother is behind. Taki, the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So, sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo is satya kahal ja gaya hai. तो सत्संग और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ सभी को किस बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग सो वेरी नाइस सत्संग तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ
एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का, माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे हैं लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi?

हिंदू कहाँ का किसको कहते हैं बताओ? हाँ है, नहीं संस्कृत में तो है, सिंधु। हाँ तो सिंधु तक का है हमारा, इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना। तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है, लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी, बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस, और किसी के ऊपर है ही नहीं। और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है, तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे, सब हिंदू हैं, लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस, सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री एंड वेट माय कंट्री दैट व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट एंड देन इज एवरीवेयर या सब आई एम कमिंग ऑलवेज विद एरोप्लेन्स यस एंड आई सी देयर फ्रॉम दैट आई सी इट्स अवर इंडिया हमारा इधर से सो दैट ऑल माय डिसाइपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दे हैव ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड दे प्रैक्टिस ही ऑल द टाइम्स एंड कमिंग डोंट वरी दे आर नॉट बट वी वांट टू कम टू हियर। स्वामी जी है महेश्वरानंद गए तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ पहले मैंने कराया बट इस एंड आई टॉल्ड देम बट इट डिडंट नो आई हैव डन एंड व्हाट डू यू व्हाट विल डू एंड सो माय डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या आप करो ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas mein aur wo thoda pehle theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा सा ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चपड़ हो गए से भी जगह हैं। हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे

0: रूपावास गांव है, रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मैनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास. यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड. अठारह गाँव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास. तो वो ठेठ तक जब ही मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे, कि मैं मनुष्य हूँ बस. अब हम मनुष्य है तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप लोग मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य है, मेरे देश का. तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा. हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने. हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ए प्रेमानंद जी. अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो. हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का. प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है. और इनका मकान या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है. ओके लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का. तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए. और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो. श्री दीप नारायण भगवान की जय.
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु.

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री माधवानंद जी की जय, गुरुदेव की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माता पिता गुरुदेव
0: की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हरि ओम।
0: जय की जय।